साथ है। फिर माता माता जी कहने लगे कि जी बोला उन्हें आप कैसे को पानी भरा, इतने ऊपर से कुआं से मिला भरा जाए तो ईश्वरत से इसलिए तो मुझे पानी भरा पिए खाते मैं नई सिला के पालो पालो के लिए तो नहीं मैं गाँव में समझ गाँव रहा माता खाते की जो मैंने खुदाई है तो उसमें मैंने पानी नहीं दिया और जो मैंने

0: श्रेष्ठ एक घटना निर्मेर खानक दिया हाइब्रिड में एमपी 30-30 64 44 यूएस 312 ओ आईएमआरएस 57-86 उसने तो 49 का धान में राधा 4 सावित्री 52 साना मंसूरी राम धान 600 505 301 जमिनी जसिन मसिनो मोटा धानक दिया आप श्रेष्ठ एक भेट में आशा करवा
1: उसके रासायनिक मन में यूरिया डीएपी पोटास और मेरे तावन के बिया विषादी पशु पक्षी के औषधि उपचार कर दी
0: स्थान बांसरी किसान सब क्षेत्र थी सामुदायिक पुस्तकालय
2: हमने उसकी जानने हो खेती बाली में तो समस्या आ गई थे
3: कहाँ जाओ कहाँ करो फिर दुख पैदा हो गया
2: और कहा हम तो कुछ पैसे
0: यदि न मौसम को हवा पानी है अपने खेती बाली में समस्या पर ला कर थे और जरा नाम ना सुने समान तो उपाय तो अच्छा हो जाए थे याद कर देना अरे सोमवार संजय 8 बजे रोटी करवा
3: समस्या तो एक रचिव समाधान होगी मुझे कार्यक्रम होगा
0: किस्ता तिर्न से त सामा खाटा पर्न भयो 3 लाख ऋण लिएन हौ 3 लाख से तिर तिर्सेक्नु अब मन तिर पर्न पनि बाटो छ
4: हो अपना 3 लाख रुपियाँ ऋण लिएर थिए 3 लाख रुपियाँ फिर्ताकै क्षेत्र बाटी ऋण लिने त कै प्रतिशत ब्याज तिर पर्न त अपनालाई थाहा छ हो अवश्य अपना सामा हो ब्याज सहित 3 लाख रुपियाँ से ध्यान तिर पर्न
0: थिए कलक शर्तको पालना निकै छ नियत वर्ष कर्जा निर्न वा बहकाउमा राख सामा ब्याज मिला हुई कर्जा भुक्तानीमा निर्मित बहानाबाजी गर्न नाराबाजी गर्न वा दौडफेर वाञ्छनीय गतिविधि गर्न गैर कानूनी वा वित्तीय अनुशासन विरुद्धको निन्दनीय कार्य हो।

मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत चाहता तो मत

आदिवासी समाज बांसरी बटिया से समुदाय का प्रभावित सामुदायिक रेडियो पूर्वाधन नर्मदे गुंडा सात विकास से बोलिया थी। अठा बेला हमारे स्टूडियो भरी में बिहानी 10 बजे आज बिहानी सभा वारे जानकारी कराई थी।

0: खानाले बच्चा आमा तन्दुरुस्त बनाए। पूरा खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी थियो।
1: रेडियो पूर्वा एफएमको सहकारमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्दिया से जनहितमा जारी सन्देश।
2: रेडियो 107.7 मेगाहर्ट्ज।

भाई हमें तो उसके सब सूखा लावे तो अगर दिल्ली है तो मैं मतलब वो समय पूरी कहीं से फैल गया कथा क्या सूखा करे कथा ही कट गई है करने तो आप ना करते सूखा करते कि वो तो वो दिन संसार के चीजें पर पाने ना है तो ना लगा तो घाव कहेगा और बाद लाइफ से तो काफ सही था सब प्रकृति से बोले कि पानी सहारे सहारे सब पंक्ति लगा लगा पर भूख खाई गई बहुत बाहर का भी समस्या करी बिल्कुल सब समस्या गलत है हैरान लागत हुआ तेल लागत सब भी ले वो सब चीज के सब कल्याण है बात मुस्लिम का 524 घंटा में 10 करोड़ मुझे चिराहों बढ़िया पहले पानी आदि आदि वन गहरे सरकार से हाय होने लगा था जवाब आक्रमण गठन को 24 से दीपक का घटना घटन वो घटना में से बीजेपी का पता बता दो कैसे तंग जगह खड़े रहता है